0: किसके बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं? एक बहुत बड़ी खबर के बारे में,
1: मुख्तलिफून,
0: ये वही खबर है जिसके मुतालिक वो आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं।
1: सयालमून,
0: खबरदार वो जरूर जान लेंगे।
1: तुम कल्ला सयालमून,
0: फिर खबरदार वो जरूर जान लेंगे।

वो लोग कहेंगे क्या हम जरूर पहली हालत की तरफ लौटा दिए जाएंगे। क्या जब हम गली सड़ी हड्डियां बन चुके होंगे।

0: वो कहेंगे तब तो ये लौट कर जाना बहुत घाटे का होगा।
1: फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा,
0: बस सुनो कि ये तो यकीनन महज एक बड़ी डांट की आवाज होगी।
1: फ़इदा हुम बिस्साहिरा,
0: तब वो अचानक एक खुले मैदान में होंगे।
1: हल अताक हदीथ मूसा,
0: क्या तेरे पास मूसा की खबर आई है?
1: इद नादाहु रब्बुहु बिल्वादिल मुकद्दस तुआ,
0: जब उसके रब ने उसे मुकद्दस वादी तुआ में पुकारा।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान पाक सुन रहे थे। अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनते हैं, तो चलिए आइए एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनते हैं।

0: attendees had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna and Nasrat were able to ask questions on a range of issues related to their faith and contemporary topics.
1: सवाल ये है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें इस चीज़ के लिए दुआ करनी है और हमें वो नहीं मिलता तो इसमें क्या बेहतरी हो सकती है अल्लाह की
2: कल ही खुद में मैंने बताया था दुआ करने के लिए मुसीम इस्लाम ने क्या फरमाया कि पहले तुम दुआ मांगो अपने दीन के लिए अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए वो ताल्लुक मजबूत होगा तुम्हारा तो तुम्हारी दुआएँ कबूल होंगी पर अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है सिर्फ मुझे आज अच्छे नंबर चाहिए इम्तिहान में तो मुझे मिल जाए मुझे अच्छी औलाद चाहिए तो मुझे मिल जाए मुझे फलां अच्छे कार चाहिए तो मुझे मिल जाए मुझे घर अच्छा चाहिए मिल जाए मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए मुझे फलां इतने पैसे मिल जाए ताकि मैं काम कर लूँ याशी करूँ तो वो तो अल्लाह ताला की तो ये प्लान नहीं है अल्लाह ताला का प्लान तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने पैदा किया है इबादत के लिए तुमने इबादत का हक अदा कर दिया पहले ये देखो क्या अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा हो गई जब अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा हो गई जो उसका हक है बंदे का तो कोई हक नहीं कल भी उन्होंने मिसाल भी दी थी ना हक के बारे में भी कि बंदे नमाज़ें पढ़ ले चार बड़े गौर से उसके बाद सो जाए रमज़ान में 30 दिन रोज़े रख लिए और बड़ी तहज्जुदें पढ़ ली नमाज़ें पढ़ ली उसके बाद ख़त्म हो गया किस्सा और उसके बाद मेरा हक बन गया अल्लाह ताला पे तो हक कोई नहीं अल्लाह पे कोई हक नहीं अल्लाह ताला के हम पे एहसान है हर चीज़ उसका एहसान का बदला हम किस तरह उतार सकते हैं हम उतार ही नहीं सकते लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बने उसका इबादत का हक अदा करने वाले बने जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे फिर अल्लाह ताला कहते हैं हाँ अब मांगो मुझसे मैं तुम्हें देता हूँ अल्लाह ताला ने तो कुरान शरीफ में पहले कह दिया है कि मेरी मानो पहले बात मेरे पे ईमान मजबूत करो फिर बातें करेंगे हम अगली दुआ कबूल करने की यही कह देना जी बस मैं अहमदी हो गई मैं मुसलमान हो गई मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लिया अल्लाह ताला का फ़र्ज बन गया कि वो मेरे सारे काम पूरे करे नहीं नहीं अल्लाह ताला मालिक है अब तुम पढ़ाई कर रही हो तुम्हारा टीचर जो है अब तुम पढ़ा रहा है इस तरह कि ये सब्जेक्ट है इस तरह पढ़ना है उसमें तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें नंबर मिलेंगे ना मेहनत नहीं करोगी तो नंबर नहीं मिलेंगे जो मेहनत करते हैं वही गिमनाजियम में जाते हैं नहीं तो गुजामशुले से ही फारग हो जाते हैं ठीक है तो मेहनत करनी पड़ती है अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कुरान शरीफ में कि मेहनत करो फिर मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा मोमिन को भी मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम इम्तिहान दे रही हो लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रही और एक ईसाई लड़की या एथिस्ट लड़की जो है वो मेहनत कर रही है वो तुम्हारे से ज़्यादा नंबर ले लेती है तो तुम कहती हो कि मैंने तो नमाज़ ही पढ़ ली थी 2 रखते और मैंने पढ़ाई भी कर ली थी और नंबर उसके ज़्यादा आ गए तो उसका मतलब अल्लाह का प्लान गलत हो गया अल्लाह का प्लान गलत नहीं हुआ अल्लाह के 2 कानून हैं एक कानून शरीयत एक कानून कुदरत कानून शरीयत कहता है कि तुम दुआएं करो नमाज़ें पढ़ो फिर मेरे से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा कुरान शरीफ में कह दिया कि पहले मुझसे मांगो और मेरे पे ईमान रखो तब मैं तुम्हारी पूरी करूंगा बातें रब्बुल आलमीन है रहमान है वो हर एक को जो उसकी मेहनत है उसका फल दे देता है चाहे वो ईसाई हो या यहूदी हो या देरिया हो अगर मेहनत करेगा तो ले लेगा अभी टूर में दोबारा से ज़्यादा नंबर ले जाएगा तुमको जी मेरा प्लान तो ये था नंबर उसके आ गए उसका तो प्लान अल्लाह के साथ नहीं था हाँ अल्लाह कहता मेरा हक अदा करो फिर अपने प्लान पे भी अमल करो देखो फिर मैं बरकत डालता हूँ
1: मेरा सवाल है कि तुर्की में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के तबरुकात किस हद तक असली हैं
2: मैं तो वहाँ जाके देखे नहीं लेकिन क्लेम किया जाता है सहाबा आसलम के तबरुकात बाद साथ ले गए थे वहाँ म्यूज़ियम में उन्होंने रखे हुए हैं लोग मुझे तस्वीरें भी भेजते हैं उनके बॉटल भी बनाए हुए हैं तो वो क्लेम करते हैं कि वो असली हैं और सुल्तनत उस्मानिया जो थी उस ज़माने में बहुत सारे तबरुकात वहाँ आए थे उससे पहले भी आए होंगे तो अगर वो कहते हैं असली हैं तो असली होंगे लेकिन अगर कुछ मुबालगा किसी चीज़ में बनाया हुआ है तो वो गलत होगा उसमें से बहुत सारे असली भी हैं बहुत सारी चीज़ों की रेप्लिका बनाई गई हैं लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि वो असली हैं इसलिए अगर वो रखने वाले कहते हैं असली हैं और उनकी साथ रिपोर्ट सारी लिखी हुई है

0: उसके असली होने की, तो हम भी मान लेते हैं असली है, तो वो रुकी है ना। बाकी इतनी पुरानी तारीख को बात हुआ तो पता भी नहीं लगता। अब हमारे वहाँ सिंध में मीरपुर खास कुनरी के साथ, वहाँ एक सहाबी की कब्र कहते हैं, उसको नाम भी उन्होंने दे साहब रखा हुआ, सहाबी का गांव, और एक लंबी कब्र उन्होंने बना दी। वो सहाबी थे, बड़े बुजुर्ग थे, और ये आए उस ज़माने में और यहाँ दफन हुए, पर वो कि यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी लंबी कब्र बनाई है उनकी। इतना लंबा कद तो नहीं था उनका, लेकिन उसको वालगा करके उन्होंने उसको बड़ा कर दिया। लेकिन हो सकता है वो सहाबी वहाँ दफन हों, इसलिए मुस्लिम हो भी जाते थे, दुआ करते थे। बाकी खुलफा भी जाते रहे, मैं भी वहाँ जाके दुआ किया करता था कि अगर ये सही कब्र है सहाबी की, तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और कुछ शिर्क का वजह न बने। ये लोगों ने तो कुछ शिर्क का वजह बना लिया, प्याले और तोहफे और फूल और पता नहीं क्या कुछ रख देते हैं वहाँ ला के, वो ना हो। सो बाज दफ़ा पता भी नहीं होता, लेकिन उसने जन रखना चाहिए कि ठीक है उन्होंने रखे हैं चीज़ें, ये तो बाज चीज़ें होंगी वहाँ की, और बाज दफ़ा नज़र आता है बाज चीज़ों से कि वह हैं असली।
1: Alajna member during the mulaqat asked Hazrat Namir al-Mu'mineen about the wisdom of Allah behind creating children that are born with disabilities.
0: Allah ki hikmat hai to Allah behtar janta hai, lekin jo mazboor bachche paida hote hain wo bhi baaz dafa insani galtiyon ki wajah se paida hote hain. Baaz dafa maaye jo hain jo bachcha paida karne wali hai wo खुराक सही नहीं खा रही होती हैं, बचपन में उनकी नरिशमेंट सही नहीं हो रही होती, या उनके बाज़ जीन में कोई खराबी हो जाती है, या मर्दों में उसकी वजह से एक नुकस पैदा हो जाता है बच्चे में और वो पैदा होता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया तो तुम्हारी मुकम्मल दुनिया नहीं है ना, असल दुनिया तो जो हमेशा की दुनिया है, यहाँ तो तुम 70-80 साल जिंदा रह लोगे, या बच्चे जो हैं मासूम ऐसे बच्चे उम्र लंबी उम्र भी नहीं पाते, ज़्यादा ज़्यादा 30-40 साल की उम्र में बाद फौत हो जाते हैं, बहुत कम है जो लंबी उम्र जाते हैं। तो इनको अल्लाह ताला कहता है कि इन बच्चों को जब इस तरह पैदा होते हैं तो वैसे मैंने बख्शा हुआ जन्नत में उनको सेहतमंद रख के एक माहौल ऐसा दूंगा कि वहाँ वो जन्नत में याशी कर रहे होंगे, और तुम लोग ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाओ, माँ बाप भी अगर नेक होंगे तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते हैं ना जितने बच्चे थे छोटे छोटे हदीस में आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बच्चों की लेके दाश्त कर रहे होंगे, उनसे खेल रहे होंगे, वो सेहतमंद होंगे वहाँ जाके। तो इस दुनिया के सुर तसव्वुर ना करना चाहिए, जिसको खुदा का तसव्वुर है ना, जिसको जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर है, जिसको नेकी और बदी का तसव्वुर है, अल्लाह ताला पे यही रखता है कि ठीक है अगर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी मुश्किल में डाला है तो अगले जहान में उनको बेशुमार इनाम से नवाजेगा। और जो माँ बाप सब्र करते हैं इस बात पे और बच्चों को पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं सही तरह, उनको अल्लाह ताला रिवार्ड देगा, जन्नत में भी देगा, लेकिन अल्लाह ताला वैसे भी उनको नवाजता है। ऐसे लोगों के गुनाह भी अगर हैं तो माफ़ कर देता है अल्लाह ताला, या बहुत कम कर देता है, बहुत कम सज़ाएँ होती हैं जो दे रही हैं उनमें से भी होंगे, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ये भी ट्रायल है एक, अगर इस दुनिया में इस ट्रायल से आदमी गुजर जाए तो अल्लाह ताला अगले जहान में बहुत नवाजता है। ठीक है, वही असल ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी 70-80 साल की है ना, अगली ज़िंदगी हमेशा की है, ये तसव्वुर करना चाहिए। ठीक है।
1: Another Lajna asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how a Lajna member can strengthen her spirituality.
0: अल्लाह ताला पे ईमान है।
2: हाँ जी।
0: मुसलमान हो।
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: मुसलमान के क्या फ़रायद हैं? अल्लाह की इबादत करना
2: जी।
0: 5 नमाज़ें फ़र्ज़ जो हैं वक्त पे पढ़ें, वो नौहानियत तेज़ करने का तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यही फरमाया है जो सलात है नमाज जो है वो रूहानियत को तेज़ करती है और फोशा और गलत बातों से रोकती है। तो अगर इंसान नमाज़ें पढ़ रहा है और उसमें दुआ कर रहा है सही तरह अल्लाह ताला से, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला दुआ कबूल ना करे और रूहानियत तेज़ ना हो। यकीन होती तो जो से पढ़ें, हम सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद रहमान रहीम कहने के बाद अगली जब आयतें पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग फिर कहीं से कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं, वो पता ही नहीं होता है मालिक यौमिद्दीन का क्या मतलब है, इया का नाबुदो या का नस्तैन का क्या मतलब है। अभी मैंने इसे खुद में या का नाबुदो या का नस्तैन की वजाहत की थी ना, उससे बहुत सारी बातें आती हैं जब सूरह फातिहा पढ़ते हो उस पर गौर करो, कुरानियाँ तेज़ हो जाती, 5 नमाजें हों उनमें इंसान दुआ कर रहा हो